0: श्री दीपनारायण
1: भगवान की जय।
0: श्री अलका पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री देवा पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव जी की जय।

0: ओम श्री नारायण भगवान
1: की जय।
0: श्याला पुरुष महादेवा
1: की जय।
0: श्री देव पुरुष महादेवा
1: की जय।
0: श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी सत गुरुदेव जी की जय। ओम श्री अलका पुरी जी सदा पिता परम्परा की जय।

प्रदीप नारायण भगवान का जय। गुरु नानक जी महाराजा की जय। प्रदीप नारायण भगवान की जय।

0: हथेलियों को अच्छे से मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती हैं, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको, ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती है, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मतलब वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य सुदनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my
2: people?
1: Okay.
2: In America.
1: Okay.
2: To Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life.
1: Yoga
2: Foundation.
1: In.
2: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life.
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji. Swamiji. DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Que dollar?
1: Did I say?
2: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज सिंग वन भजन दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी ब्रह्म ऋषि पी थावला नागौर
1: नागौर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने।

0: है, सुचिता नहीं है, समता लायक नहीं है।
1: क्या दया है कबीरा, हम में जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मा नंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मा नंद जी महाराज जो है ना, मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है।

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवेगा। जब परमात्मा की कृपा होगी

धन्यवाद कृष्णाचार्य। अब वो क्षण आ गया है जब हम स्वामी जी को सुनेंगे। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी के प्रवचनों से हम आशीर्वाद से हम लाभान्वित होंगे। मैं परम आदरणीय गुरुदेव को वंदना करता हूँ कि वो पधार कर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीष प्रदान करें। आदरणीय

हम माता जी नहीं है, लेकिन पृथ्वी माता है। सारे विश्व के अंदर मातृ हम। उसके बाद उठ के जाकर के पानी पीने के, पानी पहले सबसे ज्यादा है। जल जो है, जल सो जगदीश, जगदीश जो जग सर्विस, जगदीश भगवान जो है। तो अपने अगर देखें एक बार के पानी कितना है, तो कितना पानी है, वृक्ष वगैरह जो कुछ है पृथ्वी पे जो भी, तो जाकर के जाता है, उठ के जावा नहीं, जन यूं हाथ में थोड़ा पानी ले लो, जावा पानी कटो, पानी ले करना उठ गए, बस एक एक ही दो तीन बूंद बूंद, और वो बूंद उसको देखते ही कहेगा कि मैं सर्वत्र सबके अंदर मैं हूँ, और वो लगते ही सारे शरीर के अंदर में, जैसे कोई किसी को इंजेक्शन लगा दे नहीं तो जोर जोर करे नहीं, वैसे ये जल जगदीश जो है ऐसा करते पूरे शरीर के अंदर हो जाएगा, तो देखो कि आपको बहुत अच्छा रहेगा सबको। और पृथ्वी वो वगैरह सभी जो है, अब मनुष्य के जब घर पे रहते हैं सोते हैं, तो वहाँ पर जानवरों को सोते समय माता पिता को बच्चों को उस कमरे में जानवरों को मत टिकना, और देखिए कि गाय के बछड़े का तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया, और एक कुत्ता जो है वो कुत्ता ने लिसेते लेने कुत्ता ने कहने सोए ने हुए, हाँ हुआ घनो बड़ी कोई अच्छी बात नहीं, कुत्ता भी तो है ही है, लेकिन वो कुत्ते ने जो वो धनी धनी तो बैठे उठे हुए, ने वो कुत्ती बने कहते बीच में, या वो भावनी माँ उठे घरे में तो कुत्ते वो लेने जावे, देख लीजिए वो कुत्ता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो तो वहाँ पर भी उन लोगों का इतना हो रहा है, लेकिन मैंने हम उनको कह दिया कि एक तरफ खिलाओ कराओ सभी, लेकिन उससे आगे वो नहीं जा सकता है। और उसके बाद में मुसलमान बहुत अच्छे हैं, वो उसकी माँ को बाप को क्या शब्द में बोलते हैं, कहीं कहे मुसलमान कहीं कहे, उन्होंने उसकी माँ को उसके बच्चों का जो क्या कहीं कहते हैं उन्होंने है? तो अब्बा है ना, हाँ तो वो अब्बा है ना, अब्बा अब्बा, तो वो उनके बच्चा बच्चे सब उसका वो करते हैं, वेरी गुड। अब ऑस्ट्रेलियन, अब जो ऑस्ट्रेलियन का कहना हारा, मैं तो घर वहीं बैठे ही रहूँ, तो वे है तो वो उसका ही ऐसा, जो उनके गांव में वह कहते हैं वो करते हैं, तो हाल तक वो वैसा क्या कर रहे हैं। और वेर और दूसरा है तो एक बता दूं कि अपर हिंदू, हमारा हिंदुस्तान के, अब हिंदुस्तान के जो है कहीं केव माँ केव और कहीं केव पिताजी कहो टावर हो गए ये कह रहे, अब आपके यहाँ बता दो मेरे को इस हिंदुस्तान के अंदर में, मेरे विदेश में जाने से पहले तो अच्छा था, और अब वहाँ से चले तो आप बता दो आपके बच्चों का कहीं के आप बोले चोरी भी हो सारा भी हो कहीं कहेगा टाबरे टाबर रखे दो हैं, और माँ ने कहीं के हमें बाप ने कहीं के हमें पता नहीं, मन मन तो ठाई को नहीं, मैं तो इतना कोई को नहीं है कि नहीं,

तो आपके बच्चे का, आपका नाम, आपका क्या, हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, हमारे भगवान के नहीं है, और वो भी उतना उनका वो वैसा नहीं है, तो क्यों आपके भारत के अंदर हम सब छोड़ दिया। ठीक है कि हम हिंदुस्तानी है अटे, लेकिन मेरे विचार में जो कहता हूं कि आप नहीं रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, आप बोलते हो ना सभी को, कौन कौन बोले चावरा ने बच्चे ने, अब इसके पास में करने से मैं क्या करूं। मेरे को विदेशी कहते हैं कि महाराज जी आप ऐसे करते हो, ये क्या हो रहा है। अब दूसरा है कि योगा, योगा, योगा जो है, मेरे योग का जो है कि सारे विश्व के जितने भी हैं वो सभी योगा उसका नाम कराता है। तो ऐसा है कि जो भी हमारे साधु संत जो योगा योग का करते हैं ना, तो कोई उस गुरुजी का उनका नाम उसका कराएंगे, उनके पिताजी का वो गुरुजी का नंबर है, तो हमारे साधुओं का और सभी का उसके पिता का जो भी है वो उन्हीं का नाम देंगे, जैसे माँ उसी के बेटा बेटी का नाम देंगे। अब वो उसको तो छोड़ दिया, अब जितने योगी हमारे हैं, हमारे योगियों का मेरा, उन सबको कैसा कर दिया कि छोड़ दिया, और इसके अंदर में यह भी कर दिया कि दो शब्द नहीं करना है कि अभी जो योग वाला काम करेंगे कि दो शब्दों से नहीं करेंगे कि क्या कि मांस और कहीं और मदिरा, ये हम नहीं बताएंगे कि नहीं करेंगे। साधु कहते हैं यहाँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन उनको नहीं कहूँगा जो करो या कर मत करो। और मेरे जो योग का कराया है आज तक मेरे पास में मेरे टावर बैठे हैं यहाँ 5 साल तक, उनके बच्चे उनके आगे करके उनको सबको अपना हिंदू हमारा बताया है, ऐसा अच्छा बताया, आश्रम बताया है। तो आप ऐसा मत कहना, मेरे को दुख मत कराना मुझे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि योगा इन डेली लाइफ एंड इस योगा करते समय मांस मदिरा ये सब छोड़ दिलाएंगे, और हमारा भारत जो है तो हमारा भारत भारत ही है और रहेगा। लेकिन अभी ये जब तक आपने इन बच्चों का अभी नाम क्या कर लिया और क्या कराया और कुत्तों को हाथ में लेकर के रह रहे हो, तो आई थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। कुत्ता अच्छा है, बढ़िया है, उसको उनकी जगह रहनी होती है, और आप भी तो एक गाय का बच्चा आता है ना, तो घर में थोड़ी एक लोग एक 5-10 दिन के लिए एक वैसी अपर गाय की बछड़ी है ना, कितनी अच्छी है, गाय की पूजा होती है और कुत्ता की पूजा करती है। तो हमारे भारत के अंदर, क्योंकि देखिए कि आपको कहता हूँ कि जितने विश्व के अंदर में सब कुछ जो हो रहा है, खाना पीना बोलना सब, लेकिन केवल हिंदुस्तान जो है सनातन धर्म है वो सब कितना प्रार्थना करते हैं, जो ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, कई साधु संत करते हैं, बहुत वही, बस इसके अलावा और कोई है ही नहीं संसार में, कल कोई नहीं है। हमारे लोग जो गुजरात में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, हमारे इस गांव के घना हमारा बैठा रहे लोग भगे बटे जाओ ऐसा जावे वेरे वे काम करे, बहुत करे, पूजा करे हमारे लोग वाले। और जो पहले वो मूसा खाने वाले थे ना, वो भी छोड़ दिया कट्ठे अमेरिका में हमारे लोग कि अरे माँ ऐसा, तो वहाँ से छोड़ दिया, कहाँ से, यहाँ से, और वो जो है क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा रहना देना, तो मोदी जी साहब ने बहुत बड़ा कराया है, कर रहे हैं, और उन सभी का, इन सभी का वापस सनातन के अंदर में, सनातन सत्य सनातन,
तो उसी तरह मेरा योग का अंदर मेरे जाने से पर एक एक थोड़ा और कह देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत खराब है और खराब नहीं सॉरी टाइम कमी है। तो फिर किस क्या किया अभी उस करीब सारी ज़्यादा से ज़्यादा तो अब 20 साल या थोड़ी सी और। तो फिर मेरे पास में मेरे विदेशी लोग जो जा कर के गए कि स्वामी जी ये विदेशी में हमारे यहाँ गायों का वो कहाँ रखते हैं कैसे रखते हैं और पानी कैसे और तो 5-6 आदमी आया गायों ने देखा और अटल तो गाँव में है गाय है ही नहीं कुत्ता है ही जगह तो सॉरी तो वहाँ पर देखो ये बताऊँ आपको कुछ में आपने देख लिया हो और दूसरों को नहीं देखा है। तो वो क्या कि 5-6 बार में गए तो वहाँ एक गाय का बच्चा आ रहा है आता है तो दो आदमी बैठा कि भाई गाय है और गाय बच्चे निकाल लिया आता है जैसा अपना है। तो वह जो एक बच्चा आयो गाय रो कडायो तो वो टोकड़ी नहीं है तो टोकड़ो हो देख लेना आप इसी को और तो टोकड़ी है तो वो टोकड़ो तो वे हैं दे दिया कुदायो यूँ खाँचियो एकदम नहीं क्यों गणा रहे यूँ इसको दियो नहीं करे गाय को बिच्छी गाय हमको दुख बहुत दुख कर रहा है अभी बहुत दुख कर रहा है। तो उसमें क्या किया कि वो लोग बैठे थे तो उसको जा कर के 5-6 आदमी दूसरे हैं ना वो काम करने वाले वो क्या करते हैं कि वो बकरे का गाय का बछड़े को काट करके खाने लग गए। तो उस समय वो सभी मेरे विदेशी लोग थे मेरा नहीं तो उन्होंने कहा कि बाप जी मैं नहीं खाऊंगा नहीं करूंगा तो क्या कि हम कोई जानवरों को नहीं मारेंगे। उन सभी ने कराया कि कोई जानवर का गाय का भैंस का दूध वगैरह नहीं लेंगे गाय का दूध रहेगा भैंस का भैंस रहेगा बकरी का बकरी रहेगा कुत्ते का कुत्ता रहेगा वो उनका है लेकिन उसका पानी उनका मत खाओ। तो अभी देख लो मैं करा रहा हूँ और नहीं तो हम मैं तो हाल खा रही हूँ अपना दूध खाऊँ उन्हें अपन है लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे लोग अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिजी कनाडा एवरीथिंग इन माय एवरीवेयर तो वो लोग हैं उसको क्या कहते हैं वेगन का नाम होगा आपके आपके पास में कोई। तो वो क्या है कि गाय का दूध घी मक्खन नहीं खाएंगे मधुमक्खी का वो भी नहीं खाएंगे गाय का उद्गा है जो वो है और जो भी जानवरों का है नहीं वो उसका हम जो जानवर जो है जानवर खाने का उनका बच्चा है बस उनका ही है उनके हमें उनका नहीं हम खाएंगे। और क्या खाओगे कि वृक्ष के पास में जो भी है बढ़िया से बढ़िया है हमारे तो केवल इसी को करो। तो आपने देखा नहीं वेगन है ना वेगन तो वेगन उसके अंदर में आपने गांव में अट्ठे भी हैं 3-4 जगह में कटे और ऑस्ट्रेलिया में ना दूर नज़दीक में जो है दूसरे पे है तो वहाँ पर जो विदेशी यूरोप के हैं वो या अमेरिका में रहते हैं इधर रहते हैं वो वेगनर है वेगनर। और जब मैं कहता हूँ आप बोलो आप लगा देना और कह देना कि क्या हुआ है जब हमारे यूरोप से हमारे भारत के लोग हमारे यहाँ आते हैं और जो दूसरे लोग वो भी यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाने के लिए कहते हैं और वो वेगन वाला वो है नहीं वो कहते कि नहीं नहीं हमारे पास मांस नहीं हमारे को दो वेगन देख लो आप मेरे साथ चलो मैं दे दूँगा बता दूँगा उसी दिन। इतना वो सभी
मांस मदिरा सब छोड़ा दिया, जानवरों को

0: मधुमक्खियों को और सभी, और वो करके आते हैं। और हमारे यहाँ जैसे आए तो अत्यंत बड़ी गणा है। और एरोप्लेन में बैठते हैं ना, अरे कम से कम जाते खामा मास और कहीं है। यस यस, मेरे साथ चलो, आप देख लेना क्या होता है। तो वो करने से मेरे को सभी क्या, उन लोगों ने भी कि महाराज जी, महेश्वरन जी, आपने क्या करा दिया और क्या करा रहे हो। मैं क्यों कहीं नहीं, हमारा गांव है, मेरा देश है, उसको थोड़ा वापस लाना है। हमारी माँ है नहीं, वो माँ माँ रहेगी, बेटा रहेगा, सब रहेगा, मांस मदिरा नहीं कराएगा। तो प्रार्थना करो, तो शाम को बच्चे को उठ करके, आपको बच्चों को उठ करके प्रणाम ना करें, मंदिर में जाके बैठे सभी करें। गणे करो जी, बहुत ऐसी बात नहीं है, खूब करते हैं, लेकिन खूब अखबार रहता ही है। तो इसीलिए योगा इन डेली लाइफ, तो योगा इन डेली लाइफ का मतलब सारे विश्व के अंदर, सारे विश्व में। और अगर मेरा कहेंगे योगा इन डेली लाइफ, तो कहें कौन है, कहाँ से है, आपका हिंदुस्तान का आपका है कि वो है, तो मैं तो कहूँगा आपका हिंदू हिंदुस्तान का है, हम करें करेंगे तो मेरे करेंगे, मेरे को दे देंगे नहीं। इसलिए मैंने सभी को करके कि योगा इन डेली लाइफ, एवरी डे प्रैक्टिस योगा, एवरी डे प्रैक्टिस योगा, जैसे करना अब ऐसा ही भी देख। अगर वो योगा इन डेली लाइफ वाले लेकर है, तब तो आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा। और दूसरे क्या कि वो कोई आता है 5, 10, 20 हटे आवे, दो तीसरे दिन फिर आवे कोई, तीसरा परत जाए, आगे कठुआ आ जाए, तो वो ये अभी मैं देख रहा हूँ, आई नो दैट। बट ये महाराज जी है ना, भाई जी, इनके अच्छा चल करा है, इन्होंने किया है, बहुत अच्छा करा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ज़्यादा लोग नहीं आवे, नहीं जने को ही करे, दूजो ने वन घुमा गाल दे। लेकिन मेरे अगर वो कोई आता है, अरे टाबर 18 है, देखे 10 साल की वोट देखा जाओ किताब। तो इसी प्रकार मेरा यही है कि योगा इन डेली लाइफ, सारे विश्व के अंदर भगवान के पास में, और जानवर की रक्षा करें, हमारे भारत की रक्षा करें, हमारी भारत की रक्षा करें। तो हमारे जानवर, हमारे माता पिता है, बच्चे हैं, वो जानवर वालों का अंदर मत चुलाओ। और उनको बच्चे हैं वो इना उनको करा दो, वो करो कोई मत करो, लेकिन वो एक घर के मार्ग में सामने सो करके कुत्तों के और कुत्तों के बकरी के वास में, या फिर एक बिल्ली है, थी बिल्ली भी तो खूब होती है, तो वो है उनके लिए दो। लेकिन एक घर के अंदर में जो है वहाँ नहीं जाना देना चाहिए। बोल श्री दीप नारायण भगवान की जय, देवाधिदेव देवपुरी श्री महादेव की जय, माधवानंद जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, मात पिता गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति। हमारी भारत, हमारी भारत, हमारी भारत।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरु जी महाराज की
2: जय। He has established Vishwa Guru Deep Ashram Shodh Sansthan. He is working hard to bring to light the unpublished work of great Sanskrit scholar Pandit Madhusudan Ojha. Now, I humbly request Mahamandaleshwar ji to propose a vote of thanks.
3: पहले मैं हमारे प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी को बुलाता हूँ थोड़ा, 2 साल का एक मिनट।
4: मंचस्थ विश्व गुरु स्वामी महाराज उनके वट वृक्ष के नीचे बैठे सब लोग सामने विराजमान देवी देवताओं मेरे को चुके हैं। या बड़ा टाइट प्रोग्राम था, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कल अकस्मात मैं फेसबुक पे बैठ गया और मेरे हजार सैकड़ों मित्रों ने मुझसे प्रश्न किया था कि भाई मोबाइल टेलीफोन संस्कृति सारे विश्व को छा रही है, कब तक चलेगी? मैंने कहा नहीं चलेगी, एक तो मेरा उत्तर ये भी ऐसे समाप्त हो जाएगी कि सारी दुनिया बहुत चक्की रहेगी। नंबर दो कि अभी जब तक चल रही तब तक हम लोग हेलो का हेलो हेलो करते हैं, इसका अल्टरनेटिव बताइए। मैंने कहा कम से कम भारतीय और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसका अल्टरनेटिव मिलता है ओम, कृपा करके ओम बोलिए जब जब भी टेलीफोन को उठाएँ या बात करें। नमस्कार, धन्यवाद।
3: अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबको तो इंग्लिश तो आती है, इसलिए हमारे विदेशियों की जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी इंग्लिश में बात करूँगा। सो आई वुड लाइक फर्स्ट टू थैंक टू आवर गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज, हु इज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ योगा इन डेली लाइफ इंटरनेशनल, श्री स्वामी माधवानंद वर्ल्ड पीस काउंसिल and many other societies, NGOs around the world. So Swami Madhavanand World Peace Council is also associated with United Nations as a special collaborative status, ECOSEC. And in this you saw, and we gave 5 awards, which because the program was very short, so we did give 5 awards for the promotion of Indian culture, which means promotion of ancient culture and peace. So I would like to thank our main co-organizer, Apex University. The people, the father has many children, but the dream of the father is that the children outgrow him. So we have here the whole family, Junivaldi, and 2 brothers who are actually, when you search for Apex University, this is not only one institution, there are 9 institutions, so I would like to thank for their hard work in education, and that's why also we awarded them. Also our dear Raviji with the World Peace Award. Beside them is Vice Chancellor, who worked so many years in technological field, but what you don't know, he did his graduation, I think also PhD in Hungary in 1986. So this is connection, international connection already in many places. And we have the Major Sub, which is now major force in the connecting the international cultures and the Indian cultures, because India is basically the cradle of civilization. I know it's thought about this for the Middle East, but basically India is the cradle of civilization. And Major Sub successfully proved in so many European countries, in America and everywhere, that this is true. Now we have president of Rajasthan Sanskrit Academy, Dr. Saroj Kochar. She was working in education for so many years. Now she is the chairman of the Sanskrit Academy, and also she is working very hard in promotion of vegetarianism in India. Now this is very sad thing, because before, when I came 20 years back, there was very rare places which was written non-veg. Now there is no place where is this not written. So now it's becoming opposite. The craze for the meat, unfortunately, is taking over. And main point for the meat industry is that it's healthy,

0: This very famous scholar, especially on the in Sri Vidya and Ramayana, because you know that India is cradle of the Virendraji Bansal. He actually started as an artist, and now he has a collection of 20,000 Pandulipis, the manuscripts, 20,000 old manuscripts, and when you go to his museum, unknown number of paintings. All paintings, all things, and so on. So we are thinking that also he joined this conference. So with this word, I would like also to invite all of you to, whenever you have time, to come to visit ashram, visit Om Ashram, and wish you all the best. Sri Dipnana Bhagwan Ki Jai.
1: Request Dr. Ravi Juniwal, Chairman, Apex University, to kindly convey our heartfelt gratitude to Maharaj Ji and all eminent scholars present here.
2: Param Poojaniya, Adarniya, Swami Meshwanand Ji Maharaj Sahib. अपेक्स यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पधारने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आपके द्वारा योगा इन डेली लाइफ, पीस, हार्मनी, वेजिटेरियन के लिए जो भी प्रोग्राम पूरे विश्व के लगभग 3 से 4 हज़ार सेंटर में जो चलाए जा रहे हैं, वो वास्तव में अपने आप में हमारे लिए एक प्रेरणादायी है। आप यहाँ पधारे, आपने हमें यहाँ पधार के हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार, थैंक यू।
1: नाउ दैट टुडेज सेरेमनी कम्स टू इट्स कंक्लूजन, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रोसीड फॉर प्रसाद एंड रिफ्रेशमेंट्स आउटसाइड द ऑडिटोरियम। Thank you very much.
3: Kalyan Kalyan Mantri ke saath hum isko samapan karenge. Om Sarve Bhavantu Sukhinah.

0: सतगुरु भगवान की
1: जय हो।
2: अच्छा बोल दे,
1: हम बोल दे मामा, एक आध बोल दे, फिर से आप
3: बताओ थे।
1: बोल दे,
0: बोल ले,
3: नहीं, हाँ
1: बोल ले, ठीक है।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वर सतगुरुदेव की जय।

0: दीपनारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वर सतगुरुदेव की।
1: गुरुवाई सुर मुगावलो गे गावलो बाळ गेली।

0: 5등. 5등. 예, 5등.
1: 5 बज गया. मंगेश्वर जी, नमो नारायण.
0: देवेश्वर महादेव की जय.
1: आकाश टाइम हो गया.

0: चादर दम सुधो रहे यार या थोड़ा
1: आज बदली मैंने चादर दो है आने के टाइम है यार आंगन का मन करे दम सुधो रहे ने दो नहीं मिली रे बदली।

0: ओम बोलो श्री भगवान देव विष्णु महादेव की जय।
1: एक ही में आप एक ही बदल देते हैं।

दीप नारायण भगवान की, देवपुरी समादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। इन साधना टू क्रिएट सात्विक वृत्ति, द वृत्ति व्हिच इज इन पतंजलि इट इज एट योगा चित्त वृत्ति निरोध। द फर्स्ट इज सेड अथ योगानुशासनम। Yoga begins with discipline. If there is no discipline, then your practice will not be successful. So, atha yoganushasanam. Which kind of discipline we should have? Eating, drinking, walking, society, work, thoughts, vichara, etc., etc. Sattvic, positive, the thoughts,

0: माधव कृष्ण भगवान की सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर पर हंस स्वयं श्रदान पूज्य गुरुदेव की जय।

0: महाप्रभु जी की जय हो। श्री सियालकपुरी जी महादेव की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेव की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।

विश्वेश्वरं मोहनं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं रामानुजं संभजे। ब्रह्मानंद सहोदरी श्रुतिमयी सद्वल्लरी पावनी पीयूषां बुद्धिमंथनोद्भवरसा

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class, going all the way to masters and PhD, the similarly, the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: हमारे अध्यात्म में, रिलीजन में, धर्म में प्राइमरी की 10 पुस्तकें हैं।
1: इन द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर इन हिंदू धर्म इन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी देयर आर 10 बेसिक एंट्रेंस बुक्स, प्राइमरी बुक्स।
0: धृति क्षमा दमोस्ते हम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू एंड्यूरेंस।
0: हाँ, जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरति, पकड़।
1: सो दिस इज लाइक व्हेन विश्व गुरु जी इज विद अस एंड वी टॉलरेट और वी आर रेडी टू सपोर्ट और बेयर एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम।
0: गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है।
1: सो व्हाटएवर द विश्व गुरुजी टोल्ड, गुरुजी गेव यू द मंत्रा, द टीचिंग्स एंड ऑल व्हाट यू हैव टू डू,
0: उस पर पकड़ रखना,
1: यू हैव टू फॉलो,
0: इसको धीरति बोलते हैं।
1: दिस इज कॉल्ड धीरति,
0: क्षमा,
1: एंड्यूरेंस, पेशेंस।
0: कोई छोटा आदमी अगर कोई गलती कर जाता है तो बड़े आदमी को उसको क्षमा करना चाहिए, जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकेंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्ते हम प्राइमरी में है किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा।
1: द थर्ड स्टेप इज नो नॉट स्टील, व्हाटएवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव दे शुड नॉट स्टील।
0: पवित्रता,
1: प्यूरिटी,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं, एक्सक्यूज मी, Waste, non-waste, waste, non-waste.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because, or air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शुद्ध मानी शुद्ध नहीं होता।
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृती क्षमा दमयस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रहा, हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवे, ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए।
1: So we should eat, drink, think, listen, or whatever we do should be in a such a way that our life grows, that we are going upwards in the upper trajectory.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा व्यवहार शुद्ध होगा आहार शुद्ध हो सत्वसुति तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे पकड़ सकोगे कैच कर सकोगे
1: In Brihadaranyaka Upanishad it says, if your deeds and if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhir vidya, buddhi, mind. Isko buddhi ko सदुपयोग में लाना चाहिए थी बनी बुद्धि और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है धीमनी बुद्धि है माइंड ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड It should be pure and this happens from the food.
0: Vidya.
1: Knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे उलझावे नहीं सा विद्या या विमुक्त ही जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे उसका नाम है विद्या
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू नॉट व्हाट बाइंड्स यू व्हाट डजंट कवर यू और मेक्स यू बाउंड व्हाट मेक्स यू फ्री
0: आप उलझे नहीं हैं इस बात का प्रमाण यह होता है कि आपको मोह नहीं राग नहीं द्वेष नहीं क्रोध नहीं काम नहीं ईर्ष्या नहीं ममता नहीं और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आप
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है सत्यम बदो धर्मम चरो सत्य बोलो धर्म का आचरण करो
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है जो उसके घर से साधना शुरू होती है
1: So for any sadhaka, any bhakta, any disciple, for any human being, all these primary things are necessary as a base.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है ज्ञान अलग है भक्ति अलग है ऐसा अलग नहीं है एक ही रोड के अलग अलग नाम
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling jnana, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat Road.

0: नाम हो गया। और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता
1: है। This is called Bombay Surat Road. When you cross Surat, it's called Surat Baroda Road, and then afterwards continues. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle का अर्थ होता है योग मार्ग, जिस मार्ग का नाम, जितना का मार्ग का नाम योग है, उसको योग बोलते हैं।
1: The middle school is yog.
0: योग में आपके लिए 8 पुस्तक हैं, जिनको आपको ध्यान दे करके पढ़ के पास होना है।
1: So in the yoga there are 8 books in which you have to study and then pass.
0: यम, नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि पुस्तक। यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति, नियमयति, दंडयति, स्वान, अपने को नियमित करना, उस पुस्तक का नाम है नियम।
1: The book which tells us how to control ourselves is called Niyam.
0: Niyam. Yam, apne ko rokna.
1: Yam is the book which tells us how to stop ourselves.
0: Ka arth hota hai, jo yoga ke liye kaha hua, yogash chitta vritti nirodha, wo niyam ho gaya.
1: So Niyam is this first line that when your thinking stops, when your...
0: Niyam means kanun ko pass. पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना।
1: To follow the laws and rules, to put it in your life, this is called नियम।
0: यम नियम के बाद में आसन है।
1: After that is यम।
0: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम। और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन।
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन। एंड द फोर्थ बुक अबाउट प्राणायाम एंड हाउ टू कंट्रोल द एयर एंड यूज इट फॉर द प्यूरिफिकेशन।
0: आसन से आपकी बॉडी शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर 5 ईयर है, वो 5 ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए, सामान की, मटेरियल की, सामान की।
1: सो लाइक द आसनास प्यूरिफाई द बॉडी, मेक इट क्लीन, द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस 5 प्राणास, 5 टाइप्स ऑफ एयर, which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है short and sweet। समझ गए? प्रत्याहार माने अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से contact सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं।
1: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड।
0: अभी हमारे अध्यात्म में, इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम। फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते।

0: आसन प्राणायाम फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: So nowadays in the world it's very famous, the yoga, it's only mentioning just asanas and pranayamas, what is good for the body, but yama and niyama, the rules of outer and inner behavior, that nobody tells.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रतिहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
1: So after the asana and pranayama, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: ये मेरा च्यवनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: So
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: So instead of pratyahara, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
0: कहाँ आ जाओ, हमारा चेला है वो, इनको पता है सबको. तो उसमें ये है, अब इसके बाद में होता है धारणा. धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला. ओ भाई,
1: सो यू लुक
0: संन्यास
1: लेगा, मींस धारणा
0: नहीं लेगा, नो धारणा.
1: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन. सो यू लुक एट माय द ढोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू हैव संन्यासा. सो ही सेड नो थैंक यू.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara, you are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो. So, तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो नो नो.
1: So then I said okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said okay, now you become a sannyasi, you also take your 21 generations across this world. I said no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
1: सो डिजायर्स इन दिस लाइफ दे आर नॉट फुलफिल फॉर दिस पर्सन एंड हिज कंसंट्रेशन टुवर्ड्स गॉड, डेडिकेशन इज नॉट देयर.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: बिफोर मेडिटेशन यू नीड सम नॉलेज.
0: एक जो है वो ध्यान बिजनेस बन गया है.
1: एंड दिस नॉलेज बिकेम नाउ बिजनेस.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: सो लाइक दिस नाउ दिस मेडिटेशन क्लासेस एंड सो ऑन, दे आर देयर जस्ट टू make it's like a type of business, but before you actually start with meditation you have to have some knowledge.
0: acha ye bataiye, maine aapko dena hai money, to money 10 rupaye loge ki 50 loge

0: सौ लोगे कि 500 लोग, 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you, please take the money from me, and then I give you 5, 10, 20, 50, 100, or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 का ना, 500 का.
1: From all of this, you will take 500. 500
0: का ठीक है ना?
2: 2000
0: का बंद कर दिया मोदी ने यार. 2000 दे दे. 200 का नहीं. कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी? नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees. You will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती है.
1: So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितोपि दुःखेन गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है.
1: लाइक इफ यू हैव चिल्ड्रन, वाइफ और हस्बैंड, एंड देन यू go for meditation, even in this after the meditation you will continue thinking, or during the meditation you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: manushya ke jeevan mein parivar hota, sansar hota, lekin manushya ka zyada dhyan gold pe hota.
1: There is a family,
0: kyunki gold कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: The for any human, the life, the family, and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि. हमारी किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था,
2: दिल्ली में.
0: हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते हैं.
1: समाधि इज व्हेन यू feel only yourself, there is no connection with your body, there is no connection with this world, you have connection only with yourself.
0: हमारे विश्वगुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प.
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहाँ पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है, और जहाँ की उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि.
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands, and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहाँ पर न तो शिष्य रहता है, न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि.
1: So in Nirvikalpa there is neither disciple, there is no guru, they both merge into the God, Aham Brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: So 12th class is भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं, 9.
1: In the course of bhakti, there are 9 books.
0: 9 pustake. Baat sunna to keval Vishwaguru ji ki sunna. Baki ko sab ko ignore kar lena. Nahi, humne sunna chahte.
1: So first.
0: Sarvan bhakti.
1: So first is listening. So listen only what Vishwaguru ji says, nothing else.
0: Andar se yaad karo, to only Vishwaguru ji ko yaad karo. दूसरे को याद नहीं करो, ये कीर्तन है.
1: कीर्तन और रिमेम्बरिंग इज दैट यू रिमेम्बर ओनली द वर्ड्स ऑफ विश्वगुरु जी, नथिंग एल्स.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं. ये स्मरण भक्ति है.
1: रिमेम्बरिंग द स्मरण भक्ति इज व्हेन यू रिमेम्बर ओनली गॉड एंड गुरु, नथिंग एल्स. देयर इज नथिंग सेव गॉड एंड गुरु.
0: सरेंडर, चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
1: सो दिस आर द डिफरेंट वेज हाउ टू सरेंडर योरसेल्फ टू द लोटस फीट ऑफ मास्टर.
0: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की. दूसरे की, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
1: सो इफ यू डू सम पूजा, इफ यू डू सम सेरेमोनी, डू द सेरेमोनी फॉर गॉड एंड गुरु. इफ यू फॉलो समबडी, फॉलो गुरु एंड गॉड, बिकॉज अदरवाइज यू कैन गेट लॉस्ट.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं.
1: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called Vandana. This next.
0: दास्या, सेवक, शिष्य, उसको दास्य भक्ति कहा गया है.
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: Dash. Apna istitva, apna mahatva, apna ahem akar prakar swarup mita karke Guru mein samahit ho jana unki seva mein, usko das bolte.
1: Das or servant is when you renounce all of your I, all of your egoism, and then you dedicate your life to the service of the Guru.
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का विरोध व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
1: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप, इज व्हेन यू बिलीव एंड ट्रस्ट योर गुरु सो मच दैट ही आल्सो कैन बिकम लाइक योर फ्रेंड.
0: हमारे सनातन धर्म, वैदिक मार्ग, भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नजदीक गए, तो भगवान ने उनको फिर दास ने रहने दिया, सेवक ने रहने दिया, उनको सखा बना दिया. सखा, मित्र, फ्रेंड.
1: व्हेन अर्जुन वाज विद कृष्णा, ही डिडंट आफ्टर सम टाइम ही स्टॉप्ड बीइंग हिज सर्वेंट, ही स्टॉप्ड बीइंग हिज सेवक, ही बिकेम हिज फ्रेंड.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है. बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबेरे

0: चला चलूंगा। चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया। कहते आत्मनिवेदन।
1: Atmanivedan is when you say I'm going with you tomorrow morning, I will go with you wherever you want.
0: वो आत्मनिवेदन है। आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं।
1: So it's a request of the soul that I want to live in that condition. I want to live in such a way like a God is living.
0: इसके बाद में फाइनल MA की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए। वो क्या है? ज्ञान की भूमिका।
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one. और इंट्रोडक्शन टू नॉलेज।
0: उसमें सात पुस्तकें हैं, उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई। सेवन बुक्स उसमें है। पहली बुक्स क्या है? सुभिक्षा। क्या है भैया? सुभिक्षा क्या है? बोलो गुरुजी, अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम कहाँ मना।
1: This first book is Swaicha or the own desire, and you say, Gurudev, I want to live with you.
0: Acha, ab
2: dusra. Most welcome. I'm not stopping you. I have no problem. Come.
0: आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं। अच्छा, अब बोलो, गुरुजी।
1: गुरुजी,
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास।
1: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है, उसको कहते हैं विचारणा। उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारणा।
0: उसको विचारणा बोलते हैं।
1: Vicharna means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
0: Tan Mansa. Iske baad mein jo hai, pustak hai, Tan Mansa. Guru se jab vichar milta hai, to jaise badi tanki mein se, pipe mein se paani aakar ghar ki choti tanki mein aane lagta hai, aise hi guru ka gyan shishya mein aane lagta hai. Isliye usko Tan Mansa bolte hain. Any connection, badi tanki se choti tanki mein connection.
1: So the next one is Tan Mansa, when the guru, the knowledge of the guru slowly starts to be transferred to the small pot of shishya, of disciple.
0: Sattvapatti. Ab chaturthi jo hai, gyan bhumi suvichha syat, prathama samudhairta, vicharana dutiya syat, tritiya tanumanusa, sattvapatti chaturthi syat, पंचमासन से आत्म का पदार्थ भावनी षष्ठी सप्तमी त्रियगाश्मृतम। तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते।
1: Sattvapatti is the next step when in guru and disciple there is no difference in their thinking and everything.
0: Padartha bhavani kehte hain. Padartha bhavani, jaise aapko chai yaad hi nahi aave, coffee yaad hi nahi aave, chutney yaad hi nahi aave, rasgulla yaad hi nahi aave, ice cream, phir 15-15 injection.
1: The next step is when you even don't remember, you know, neither any sweets or anything, any food you like. There is nothing there.
0: Padartha bhavani ka arth ye hai ki aapke samne stone ho aur aapke paas mein jo hai gold ho, is dono ko aap barabar samjhe, isko padartha bhavani bolte hain.
1: Padartha abhav, the the detachment from the anything is like you can have a stone or you can have a gold for you, this is equal.
0: नहीं पहले असंशक्ति असंशक्ति ये है असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं फादर हैं ब्रदर हैं वाइफ हैं चिल्ड्रन हैं कोई भी है इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना उसको बोलते हैं असंशक्ति
1: Asanshakti is when you don't think and then you go back to your family, to your brothers, sisters, wife, parents and children.
0: Ab to hamara ek hi nara na hum kisi ke na koi hamara.
1: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
0: पदार्था भावनी जहाँ सोना मिट्टी बराबर लगे कोई भी उपलब्धि कोई भी प्राप्ति संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा
1: So only after you get detached for your family and so on you can come to this detachment from the things from this world like gold and all these things
0: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था परीक्षित को तक्षक काटेगा और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके लेकिन परीक्षित डरा नहीं आप डरोगे जब कोई आएगा ईयर वो क्या ना बोलते उसको
1: सांप सांप स्नेक
0: स्नेक वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे
1: सो लाइक इन द इन भागवत देयर इज दिस कर्स ऑफ किंग
0: इसको पदार्था भावनी बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस न हो डरने लगे और कृष्ण भगवान ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नचेनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मार आपको शस्त्र नहीं काट सकता पवन नहीं उड़ा सकता पानी आपको जो है वो भिगा नहीं सकता है हवा आपको उड़ा नहीं सकती है ऐसा आपका स्वरूप है उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं
1: सो दिस इज दैट बुक पदार्थाभाव द There is no fear of snakes, there is no fear of death, there is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
0: Duriya avastha usko kehte hain, jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho, aur aapki uske prati koi आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं
1: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट इट डजंट
0: अट्रैक्ट इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की वर्क की वो हमने सफल कर दिया
1: सो इन आवर लाइफ्स From the starting point, we have to pass all these tests and we have to convince the Guru and the God that we did and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success. We should successfully pass all Vishwaguruji's tests. Or effort what he gave, we should fulfill all his wishes.
0: Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaha